कई मोड़ लिए है। वर्तमान हिंदी उपन्यास साहित्य में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय घटना है। महिला कथा लेखन के क्षेत्र में पिछले दशक में एक नाम बड़ी जीत के साथ उभर कर सामने आया है, वह नाम है मधु कांगरिया। उन्होंने अपने अलग ढंग तथा पहचान के कारण वर्तमान कथा लेखन में विशिष्ट स्थान बना लिया है। मधु कांगरिया ने अपनी संवेदनाओं और निजी अनुभवों द्वारा सामाजिक विसंगतियों को भी महसूस किया, ये उनकी सृजनात्मक कृतियों के रूप में प्रदर्शित हुआ। वर्तमान हिंदी साहित्य की सशक्त लेखिका श्रीमती मधु कांगरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को बंगाल की राजधानी का शहर कोलकाता में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनका परिवार जैन धर्म पर कट्टर विश्वास रखते थे। मधु जी की परिवार में कुल मिलाकर 3 भाई बहन थे। मधु जी दूसरी संतान थी, इकलौती बेटी होने के कारण पिता की लाडली बिटिया थी। मधु जी का बचपन बड़ा बसर कोलकाता में बीत गया। उसको अपने परिवार में अपनी जगह बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही अपनी माँ से वे छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करती थी। पारंपरिक मारवाड़ी समाज के नियमों को वे जस के तस मानने को तैयार नहीं थी। बचपन से ही रूढ़ियों से लिपटकर जीना उन्हें प्रिय नहीं है। हर मोड़ पर रूढ़ियों से टकराना उनका स्वभाव बन गया, जो आज भी उनके स्वभाव में है। मधु जी ने कोलकाता के लेडी बेटन कॉलेज से अर्थशास्त्र में MA किया। उन्हें हिंदी में विशेष रुचि थी। मधु जी का परिवार व्यवसायी जरूर थे, पर उनका मन व्यापारी का नहीं। मधु जी ने बचपन से ही मां को पैसे के लिए जूझते देखा था। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो स्त्री शिक्षा की वकालत की जा रही है, दूसरी ओर गरीबी और दहेज समस्या से बचने के लिए स्त्री को दीक्षा दिलवाई जा रही है। इस पूरे वातावरण के प्रति मधु जी के मन में प्रतिरोध जन्म लिया। इसलिए उन्होंने बचपन से ही संकल्प किया है कि वे अपने जमीन और आसमान पैदा करेगी। उन्होंने इस मकसद से MA और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा की थी कि आगे चलकर जीविका कमानी होगी। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके परिवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे एक लेखक कितना ही अपने लेखन को अपने जीवन से अलग करने की कोशिश करे, ऐसा संभव नहीं होता। जय जय उसका जीवन शब्दों में झांकने लगता है। मधु जी क्या है, उसका जीवन संघर्ष क्या है, उसे उनके उपन्यासों एवं कहानियों में बखूबी पढ़ा जा सकता है। एक लेखक की रचना कितनी स्तरीय है, ये उसका रचना के पात्र से जाना जा सकता है। हिंदू लेखक का अंधकरण कितना संवेदनशील है, ये इसके निजी जीवन से जुटकर ही होता है। घर की नौकरानी के प्रति मां के बर्ताव को लेकर मधु जी के मन में आहत हो जाता है और वे फह फह कर रो पड़ती है। यही समवेदी वेदना है जो मधु जी को अपने पात्रों से जोड़ती है। 18 वर्ष से 28 उम्र तक छोटी छोटी कहानियां लिखती रही, लेकिन वैवाहिक जीवन में धोखा गाई मधु जी के जीवन में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तथा अपनी मासूम बच्चे के भविष्य को उत्तरदायी जीवन से जुटने के लिए नौकरियों के झमेले का ऐसा सिलसिला चला कि कलम रुक गई। मधु जी के शब्दों में 18 वर्ष से 27-28 वर्ष की उम्र तक झिटपुट कहानियां लिखती रही, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया और अंत में फैक्ट्री मैनेजर घाट घाट के इस पानी ने अनुभव समृद्ध तो किया, पर जिंदगी से वह मासूमियत छीन ली जो लेखन के लिए अनिवार्य तथ्य है। उन्होंने एक कहानी हंस में भेजी जो लौटा दी गई, लेकिन वे हताशा नहीं हुई। लेखन की दुनिया में पदार्पण करते समय उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं था। पाठकों की प्रतिक्रियाओं ने ही उसमें आत्मविश्वास भर दिया था। उनका पहला उपन्यास घुले गगन के लाल सितारे सन 2000 में आया। इस उपन्यास का हिंदी ही नहीं बंगला उपन्यासकारों ने भी स्वागत किया। फिर तो मधु जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कई कहानियां में वह उपन्यास प्रकाशित हुई। यात्रा संस्मरण, विमर्श, डायरी इत्यादि विधाओं में भी उनकी कलम चल रही है। हर बार नई विषय को लेकर कुछ अनूठा लिखना उनकी अलग पहचान है। हिंदी की अन्य लेखिकाओं का लेखन प्रायः जहां स्त्री स्वतंत्रता तक सिमट कर रख गया है, वही मधु जी का लेखन जीवन को गूंजता हुआ कभी वेश्याओं की गलियों में तो कभी नशे की दुनिया के अंतरंग समस्याओं से रूबरू होता है। कभी सात्वी जीवन की कड़वी सच्चाइयों को, कभी फौजियों के यथातथ्य जीवन को खखलाता है। उनके लेखन के भीतर वनवासियों का दुख, श्रमिकों के पसीने की गंध, दलितों के जीवन का हाहाकार और जीवन की विद्रोहताओं को दर्ज भी करने की क्षमता भरी है। यही लालसा मधु जी को कोलकाता की बस्तियों तक ले जाती है। नक्सलवादियों के यातना शिविरों का वृत्तांत लिखवाती है। महानगर

तेरे जीवन की ऊब एवं संतरास माधोजी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और अपनी यात्रा के गट्टे मीठे अनुभवों का विवरण लेखनी द्वारा प्रस्तुत करती है। समाज और व्यवस्था के कड़ु तिक्त अनुभवों से संपन्न लेखिका है मधु कांगलिया। वैयक्तिक जीवन की कठिनाइयां, निजी अनुभव एवं अनुभूतियां, वैकारिक मुहूर्त, वैचारिकता आदि मधु जी की रचनाओं का आधार है। मधु जी का सृजन उनके परिवेश, व्यक्तित्व और गहन संवेदनशीलता का फल है। मधु कांगड़िया की विशेषता है कि जीवन के जिस पड़ाव में आकर लोग अपने जीवन का उद्देश्य खत्म हुआ मानकर चलते हैं, वहां मधु जी ने 40 उम्र के बाद साहित्य लेखन के क्षेत्र में कदम रखा है और सिर्फ 10 वर्ष के अंदर में ही हिंदी की विख्यात लेखिका बन गई है। उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए भिन्न भिन्न नवीन कृत्य को अपनाया है। सन 2000 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित मधु कांगड़िया का पहला उपन्यास है घुले गगन के लाल सितारे, जिसमें नक्सलवादी आंदोलन, क्रांतिकारियों का दर्दनाक जीवन, उनकी विवशता आदि को लेखिका ने अंकित किया है। मधु जी के बड़े भाई नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े रहते थे। उनकी ही चित्रछाया में मधु जी ने मार्क्स और लेनिन का साहित्य पढ़ा तथा नक्सलवाद का क्षितिज उनकी बंद जिंदगी में घुला। घुले गगन के लाल सितारे इन्हीं अनुभवों की आकांक्षा और देशांतर पर रची गई एक बेहतर रचना है, साथ साथ जिसमें एक गहरी प्रेम कथा भी है। राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा सन 2002 में प्रकाशित मधु कांगड़िया का दूसरा उपन्यास है सलाम आखिरी। ये उपन्यास वेश्याओं और वेश्यावृत्ति को उजागर करता है। इस उपन्यास के पूरे परिदृश्य को देखते हुए हमारे भीतर उन असहाय नारियों के प्रति करुणा का उदय करने की कोशिश करता है जो किसी भी कारण इस बदनाम और नरकीय व्यवसाय में आ फंसी है। उपन्यास में सुगीर्ति नामक पत्रकार पात्र सोनागाछी, बहुबसार जैसे इलाकों की वेश्याओं से मिलकर उनके निजी जीवन के संबंध में प्रश्न पूछकर उनके वेश्यावृत्ति को उन्मुख होने के कारणों को तथा उनकी समस्याओं को पाठकों के समक्ष रखता है। पत्तागोर मधु कांगड़िया का सन 2005 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित तीसरा उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास के दौरान लेखिका नशे की लत से पीड़ित युवा वर्ग के अभिशाप्त जीवन को उजागर करती है। उपन्यास का मुख्य पात्र आदित्य और उसके माता पिता के इर्द गिर्द उपन्यास का कथानक घूमता है। माता पिता दोनों का नौकरी पेशा होने के कारण बचपन से ही अकेलेपन से लड़ता आदित्य जीवन के एक विशिष्ट मोड़ पर नशे की घाई में कूद पड़ता है। उसके लाख चाहने के बावजूद वह नशे की आदत से बाहर नहीं निकल पाता। इसकी बेबसी का चित्रण मधु जी ने इस उपन्यास में किया है। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से सन 2008 में प्रकाशित मधु कांगड़िया का 14 उपन्यास है सेज पर संस्कृत। प्रस्तुत उपन्यास एक अत्यंत संवेदनशील विषय धर्म के विकृत होते चेहरे को मुख्य कथानक बनाकर लिखा गया है, जिसमें कई उपकथाएं समस्याएं ताने बाने की तरह अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पिरोई गई है। साध्वियों की जीवन स्थिति एवं उनके अंदर बाह्य संघर्ष को मार्मिक शब्द देने वाला इस उपन्यास में जहां सामाजिक आर्थिक विषमता को विस्तार दिया है, वही अन्याय और शोषण की अभिव्यक्ति को नई भावभूमि पर गढ़ा कर दिया है। भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली द्वारा सन 2012 में प्रकाशित मधु कांगड़िया का पांचवा उपन्यास है सूखते चिनार। प्रस्तुत उपन्यास कथानायक संदीप के फौज में जाने से लेकर वहां के उसके 20 साल बिताई अनुभवों की संक्षिप्त कथा है। उसमें उसका सेना में जाने का निर्णय, कठोर सैनिक प्रशिक्षण, अनुशासन और अंत में कश्मीर में तैनाती तक की सिलसिलेवार कथा है उसका अंधाधुंध भी। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग अपने पसंद के 5 उपन्यासों में मधु कांगड़िया के सूखते चिनार को भी शामिल किया। सन 2018 में किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित मधु कांगड़िया का नवीनतम उपन्यास है हम एहाम थे। इस उपन्यास में नायिका दीपशिखा के बहाने एक साधारण स्त्री के जीवन संघर्ष और कोलकाता की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। उपन्यास के उत्तरार्ध में जंगल कुमार के पक्ष से दीपशिखा के वृत्तांत को संपूर्ण किया गया है, अर्थात आदिवासियों के बीच जाकर उनके संघर्ष में सहभागी बनकर दीपशिखा कैदी नंबर 989 बन गई। मधु कांगड़िया ने अद्भुत ढंग से आदिवासी अस्मिता और संघर्ष को इस उपन्यास में शब्द दिए हैं। मधु कांगड़िया एक सफल कहानीकार भी है। कहानियों से ही उन्होंने अपना सृजन कार्य शुरू किया। उनकी कहानियां सुधा स्फूर्त प्रेरणा का प्रतिफलन है।
उनकी कई कहानियां

नया पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। ये कहानियां युग यथार्थ की पृष्ठभूमि में युग जीवन को तथा युग जीवन के संदर्भ में व्यक्ति के जीवन को विभिन्न प्रसंगों एवं स्थितियों में अंकित किया है। उन्होंने भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से मानव मन की अव्यक्त और दबी कुटी आकांक्षा को वाणी देने का प्रामाणिक प्रयास किया है। उनके प्रकाशित कहानी संग्रह है बीतते हुए,

0: है बीतते हुए, और अंत में यीशु भरी तो बहरी के अंधेरे चिड़िया ऐसे मरती है, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध, स्त्री में की कहानियाँ आदि। मधु कांगरिया का सृजन कार्य केवल कहानी एवं उपन्यास तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने कई यात्रा विवरण भी लिखे हैं। इन यात्रा विवरणों का संग्रह सन 2015 में किताबघर प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा बादलों में भारत नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नेपाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्यटन प्रिय प्रदेशों के साथ अन्य स्थानों के भी वृत्तांत है जिन्हें मधु जी ने देखा। उनके यात्रा वृत्तांत में वर्तमान समय के कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख भी मिलता है, जनजातियों की जिंदगी और उनकी समस्याएं, सिक्किम की संस्कृति, वहां के लोगों के रहन सहन एवं उनके परिधान, छोटे छोटे मछुआरे परिवारों की दयनीय स्थिति, प्रकृति वर्णन आदि का विवरण यात्रा वृत्तांत में लेखिका उल्लेख किया है। श्रीमती मधु कांगरिया कम समय में ही कई पुरस्कारों से आदरणीय है। सन 2008 को कथाक्रम पुरस्कार, सन 2009 को हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सन 2009 में समाज गौरव सम्मान, नेपाल यात्रा वृत्तांत के लिए सन 2010 के कथादेश पुरस्कार, शिव कुमार मिश्र स्मृति कथा सम्मान तथा प्रथम विद्या साहित्य सम्मान। संक्षेप में कहे तो मधु कांगरिया हिंदी कथा साहित्य की शुभ प्रतीक्षा है तथा उनका साहित्य एक भावुक और ईमानदार कलाकार की सर्जात्मक उपलब्धि है।
1: अभी आप मिनी एन की वार्ता सुन रहे थे, मधु कांगरिया की रचनाएं। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजुहु प्रोक्तवान यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्तव्यापारसन्धिषु भारतीयकृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद्भवनस्य प्रावृट् सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य संचालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न द्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। सम्प्रति नामची मण्डल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ मैत्री सम्बन्धं पुनः सुदृढम् अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।

0: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा. मुख्य समाचार. सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार. विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है. भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत. मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया. अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा. और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की. हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान. और अब समाचार विस्तार से. सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं. आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है.
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई. दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए. विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे. हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा. राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और

0: तेरे आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
2: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए, आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म्स, कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
3: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
4: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक

0: हमले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है।